0: मिल जाएगा सबको, अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: நேரம் 9:46 வாட்ஸ்அப்பழி நேர விருப்பம் நிகழ்ச்சியை கேட்டுட்டு இருக்கீங்க. எஃப்எம் ரெயின்போ 102.8. அடுத்து சச்சின் படத்துல இருந்து ஒரு அழகான பாடல் வருது, அடையாளம் பட்டு ஆசீர்வாதம். ராஜேஸ்வரி, வெங்கடேஷ், நிஷா, ராகுல், ஹரிணி கேட்டிருக்காங்க இந்த பாட்டை. அவங்க கூட கேட்டு நாமளும் என்ஜாய் பண்ண போறோம்.

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब

0: பாரத் ரோஜ்கார் யோஜனா கேம் இன் டு எஃபெக்ட் ஆன் ஆகஸ்ட் 1st லாஸ்ட் இயர் வித் தி ஒப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் ப்ரொமோட்டிங் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜெனரேஷன், என்ஹான்சிங் எம்ப்ளாயபிலிட்டி அண்ட் எக்ஸ்பேண்டிங் சோஷியல் செக்யூரிட்டி கவரேஜ் அக்ராஸ் ஆல் செக்டர்ஸ் ஆஃப் தி இக்கானமி வித் அ ஸ்பெஷல் எம்ஃபசிஸ் ஆன் தி மேனுஃபேக்சரிங் செக்டர். இட் எய்ம்ஸ் டு ஃபெசிலிட்டேட் த கிரியேஷன் ஆஃப் ஓவர் 3.5 crore ஜாப்ஸ் அக்ராஸ் த கண்ட்ரி ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் 2 years. பிரியா மண்டல், ஆகாஷ்வாணி நியூஸ், டெல்லி.
1: President Draupadi Murmu has expressed confidence that India would eradicate sickle cell disease well before its national target year of 2047. She has called for concerted efforts to raise awareness about the genetic blood disorder, particularly among tribal communities. The president was addressing a state-level program at Omkareshwar in Madhya Pradesh on the occasion of World Sickle Cell Day today. Governor Mangubhai Patel and Chief Minister Mohan Yadav were also present on the occasion. President Murmu appealed all state governments and officials not to take the disease lightly, as it is passed on from one generation to another. She said efforts should be made to eradicate it completely because treatment is possible.
2: राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूं। ये संतोष की बात है कि वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गए थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। मुझे बताया गया है कि 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है।
1: The president noted that one of the key goals set at the launch of the national mission in 2023 was large-scale screening, and it is a matter of satisfaction that the target has been achieved ahead of schedule.
2: पहला बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाना और विवाह पूर्व जेनेटिक काउंसलिंग करना, मुझे लगता है ये चीज को बेखूबी से मध्य प्रदेश में कर रहा है। दूसरा, व्यापक स्क्रीनिंग करके समय रहते रोग की पहचान करना है। तीसरे, प्रबंधन की समग्रता को सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता बनाए रखना है।
1: President Draupadi Murmu will be on a two-day visit to her home state Odisha from this evening. We have more from our correspondent.
3: President Draupadi Murmu's two-day visit to her home district of Mayurbhanj assumes special significance as it combines developmental outreach with community engagement in one of Odisha's key tribal regions. At Rairampur, the president will inaugurate a major health camp organized by AIIMS Bhubaneswar and dedicate the AIIMS Satellite Center to the people, marking a significant expansion of specialized healthcare services in the area. She will also dedicate a mega integrated rural piped water supply project that will ensure access to safe drinking water for 113 mining affected villages under Kusumi block. The president is further scheduled to inaugurate the Matru Shakti Bhavan of Brahma Kumaris at Hatbhadra, a special circuit house, and the newly created Rairangpur Police District. Tomorrow, President Murmu will visit her village Pahadpur on the occasion of her birthday and participate in social, educational, and community programs. Prime Minister Narendra Modi will join President Murmu in Rairangpur tomorrow. The two leaders will address a massive public gathering and launch a series of development initiatives as Odisha marks 2 years of the present state government. Prakash Das from Rairangpur for Akashvani News.
1: Union Home Minister Amit Shah today said the time has come to make the criminal justice system a suitable means for every citizen of the country to obtain the rights given by the Constitution. Addressing the 26th All India Fingerprint Conference 2026 in New Delhi, he said the system of the country is passing through a phase of transformation and has been systematically updated to meet contemporary needs.
4: Our goal is very clear. No matter how clever a criminal may be, they should not be able to escape the combined power of law and science. We must use scientific investigation, time-bound planning, and an integrated criminal justice system to effectively control crime. This belief is outdated that crime is controlled merely by catching criminals. Crime is truly controlled when offenders are punished and there is a strong sense that justice will be delivered.
5: को रोकने के लिए बहुत बड़ी सफलता मिलती है।
1: Union Electronics and Information Technology Minister Ashwini Vaishnav has said Prime Minister Narendra Modi expanded the network of Software Technology Parks of India STPI to Tier 2 and Tier 3 cities to accelerate the growth of the IT sector across the country. Speaking during a visit to STPI Patna,

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: நேரம் 2:26. கருப்பு வெள்ளை திரையில் பிறந்த பாடல்கள் இன்று வண்ணமயமான நினைவுகளாய் வாழ்கின்றனர். காலம் அழிக்க முடியாத அந்த பாடல்கள் வரிசையில் அடுத்ததாக பாடல் கேட்கலாம். கவிக்குயில் திரைப்படத்திலிருந்து

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: நம்ம நிகழ்ச்சியில வரக்கூடிய அடுத்த அழைப்பாளர், வணக்கம்.
4: ஹாய் பாரதி, எப்படி இருக்கீங்க?
3: நலமா இருக்கேன் சார், நீங்க எப்படி இருக்கீங்க?
4: நல்லா இருக்கேன்.
3: ஓகே, சொல்லுங்க சார், உங்களுடைய விருப்பமான பாடல்?
4: கோட்டை வாசல் ஃபிலிம்ல இருந்து மன்னவனி மன்னவனி.
3: ஓகே, உங்களுடைய ஃபேவரட்டான சாங் வருது, கேட்டு ரசிக்கலாம். அழைப்பிருக்கு, நன்றி சார்.
4: தேங்க்யூமா.